आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: गाना खत्म।
1: अभी यार सीजीपी का प्रोटेस्ट ऐसा हो चुका है कि अगर आप उसमें कुछ कहते हैं तो आप फंसेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कुछ नहीं भी कहते तो भी आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आप साइलेंट कैसे हैं। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Katrina Kaif has found herself at the center of the social media controversy after one of her prominent fan pages announced its closure over the actress' silence on the ongoing Cockroach Janta Party-led student protest against alleged NEET paper leak and education reforms. The fan page, which had over 70,000 followers, accused the actor of failing to speak up on an issue affecting Indian students, speaking a wave of mixed reactions online. I think, man, if the person is not willing to give any opinion, कोई बात नहीं है भाई। आप अगर बोलना हक है तो नहीं भी बोलना एक हक ही बात है। मैं ये बात मानती हूँ कि अगर आप पब्लिक फिगर है देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर आपका उस मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है तो फालतू में कुछ भी कह के लोगों को मिसलीड करना, उससे बेटर है कि आप चुप रहें। आई सपोर्ट कटरीना कैफ इफ इट इज इफ शी इज नॉट विलिंग टू से एनीथिंग अबाउट दिस। इतने लोग तो है ना ऑलरेडी ओपिनियन देने के लिए। इट्स कम्प्लीटली फाइन यू नो इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी ड्रैग्ड इन ऑल। वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आई

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गए।

0: गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल। मैं हूँ आयुषी एंड आप सभी का स्वागत कर रही हूँ जरा मुस्कुराओ में। एकदम इतनी भी गुड मॉर्निंग नहीं है, थोड़ी सी गुड मॉर्निंग है, बट या स्टिल इट इज़ अ गुड मॉर्निंग। इट इज़ अ न्यू डे, इट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि चलो आज एक नया दिन आया है, आज एक नया होप, नया ऑप्टिमिज्म, नई उम्मीद काइंड ऑफ हमें मिली है। Let's see उसका क्या होता है, but yeah, it has been a couple of really hard days in general. आपको पता ही होगा कि इंडिया की कैपिटल सिटी में फ़िलहाल क्या चल रहा है। All the coverage from there, all the visuals that we have been seeing, they are becoming very hard to digest. And पिछले दो तीन दिन बहुत ही ज़्यादा overall कठिन रहे हैं given the situation. So इसी के लिए आज, even if it's a new day, एक थोड़ी बहुत उम्मीद है कि चलो शायद से कुछ, you know, hopeful सुनने को मिलेगा, शायद से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा. But yeah, all we can do is just keep supporting it, keep supporting the movement, keep hoping ki sari jo cheeze hai they will fall into place and the system will become a little bit better than it was as of now because of all of that is happening. And yeah, just keep raising our voices because usse fark to padta hai, ye to hame pata chal gaya hai. So yeah, isi motivation ke saath, isi inspiration ke saath aaj hum din ki shuruaat kar rahe hain. Yes, we're going to be talking about what is happening in the triangle and what is happening around us in general. Bahut sari updates hai, aapko bahut sari cheeze batani hai, isliye aap hi kahin mein chahiye, main bhi kahin nahi ja rahi hu. Sunte rahiye Naira Rally Drama Hawaii Chef ke saath.
1: Naye saal ki shuruaat sirf positive vibes ke saath. Tune in to Radio Naira 2025 ki perfect shuruaat.
2: Hi Carrie, get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas including colorful carrot dosa, beetroot dosa and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer and homemade sauces. At Dosa Bandi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
3: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
4: Dosa Bandi, authentic flavors, inspiring journeys made with
5: love. Do you
4: love.
5: Desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest-free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
6: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
7: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा जाली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. दिन की शुरुआत वेदर के साथ करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द वेदर इज लुकिंग लाइक? वी हैव मल्टीपल राउंड्स ऑफ शावर्स एंड सम स्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड टुडे. एंड इतनी बारिश होने वाली है कि देयर इज अ फ्लड वॉच व्हिच इज इन इफेक्ट अंटिल मिडनाइट. अब ये जो बारिश है, ये जो स्टॉर्म्स है, देयर गोना बी ग्रेजुअली शिफ्टिंग साउथवर्ड एंड उसके बाद वो वाइड स्प्रेड हो जाएंगे. तो आज का दिन है अच्छा खासा सीवियर वेदर वाला दिन है. पार्ट ऑफ आर एरिया इज अंडर अ लेवल 3 ऑफ रिस्क एंड इट इज आउट ऑफ 4 एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज अंडर अ लेवल 2 आउट ऑफ 4 रिस्क. इसका मतलब ये है कि आज जो भी बारिश आएगी उसके चलते फ्लैश फ्लडिंग हो सकता है. एंड अगर फ्लैश फ्लडिंग हमें कहीं पे भी नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें आराम से गाड़ी चलानी है, खुद का ख्याल रखना है. वी डोंट हैव टू गो डाउन दैट रोड, वी कैन टेक अ डिटूर. सो आज मॉर्निंग कम्यूट से ही आपको ये जो बारिश है वो एक्सपीरियंस करने मिल जाएगी. वी कुड सी सम वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट. सो येस, वी हैव टू यूज एक्स्ट्रा कॉशन ऑन द रोड्स आज दिन भर में बिकॉज ऑफ द बारिश एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग वार्निंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड वार्निंग. सो कुछ कुछ एरिया जो है वहां पे हाइएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग है एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान दें. सो राले में है स्मिथफील्ड, गोल्ड्सबरो, विल्सन, यहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो अगर ऑब्वियसली आप यहाँ से कम्यूट करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉशन बरते, खुद का ख्याल रखें. हाइज की अगर बात करें तो हाइज अगर बी दी अपर 70s, बट या दिस इज हाउ द बारिश इज लुकिंग लाइक एंड दिस इज हाउ द वेदर पैटर्न लुकिंग लाइक फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर एज वेल. बाकी वीकेंड के वक्त एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं, मैं आपको आराम से बताऊंगी. फिलहाल इतना ही है, सुनते रहिए नायरा जाली.

0: नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. अब ऑर्गेनाइजर्स जो है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग कॉन्सर्ट्स एट कार्टर फिनली स्टेडियम. एंड कार्टर फिनली स्टेडियम की हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे ट्रैफिक नाइटमेयर्स होती रहते हैं. पिछले समर में हमने देखा कि जो भी कॉन्सर्ट्स हुए, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, कैसा एक ओवरऑल ग्रिडलॉक था. एंड हम ऐसे थे कि अरे अरे अब क्या ही करें. मतलब ऑब्वियसली लोगों को कॉन्सर्ट जाना था, इन्जॉय करना था, बट वहाँ पे कुछ पार्किंग चैलेंजेस है एंड देर आर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक चैलेंजेस एज वेल जो हमें फेस करने पड़ते हैं. सो अब गन्स एंड रोजेस एंड नोआ कहन आर द लेटेस्ट कॉन्सर्ट्स विच आर बींग होस्टेड एट एनसी स्टेट्स फुटबॉल स्टेडियम. And this comes less than a year after traffic troubles actually were there during the Chris Brown concert at the stadium. So, लोगों को मतलब पिछले साल स्टेडियम तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिला. कॉन्सर्ट शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था, बट लोग ट्रैफिक में अटके हुए थे. सो डिजिटल बिलबोर्ड्स ऑलरेडी वेंट अप ऑन ट्यूसडे अलोंग द हाईवेज एंड अराउंड द स्टेडियम वार्निंग ऑफ इंक्रीज ट्रैफिक फॉर बोथ द शोज. जो पार्किंग लॉट्स रहेंगे दे आर गोना बी ओपनिंग एट 1:30 PM एंड वहां पे दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग पीपल फॉर इंक्रीज ट्रैफिक अराउंड द स्टेडियम फ्रॉम 12:30 PM टू 6:30 PM. इट ऑल्सो सजेस्ट परचेसिंग पार्किंग इन एडवांस. आप वो घर बैठे carterfinleystadium.com से पार्किंग खरीद सकते हैं ताकि आपको वहां पे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है. एंड पार्किंग ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट इज गोना बी $60. बाकी स्टेट फेयर ग्राउंड्स पे भी पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल है तो आप वहां पे भी पार्क कर सकते हैं. बट या ओवरऑल वो लोगों को इतला कर रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन, जल्दी जाइए, पार्किंग टिकट्स खरीद लीजिए एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड कि वहां पे ट्रैफिक रहेगा तो हमें घिचड़-मिचड़ नहीं करनी है, हमें आराम से लाइन में रह के प्रॉपरली उस ट्रैफिक का सामना करना है ताकि सभी को अपने अपने वेन्यूज पे टाइम पे पहुंचने का you know एक मौका मिले. दैट्स इट. स्टे ट्यून्ड.
1: डिस्कवर वेलनेस थ्रू द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस. स्टे ट्यून्ड टू हेल्दी रहने के लिए म्यूजिकल परंपरा ऑन रेडियो नायरा.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल। मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। ड्यूक एनर्जी ने उनका पहला जो एडवांस्ड गैस टर्बाइन है वो ऐड कर लिया है, एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ द फोर न्यू एडवांस्ड गैस टर्बाइन्स फॉर इट्स न्यू कंबाइंड साइकिल प्लांट एट द पर्सन काउंटी एनर्जी कॉम्प्लेक्स। एंड दिस एडिशन इज एक्चुअली मार्किंग एक बहुत ही बड़ा मोमेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये अभी वेंसडे को आया, यानी कि कल इट अराइव्ड एट द पर्सन काउंटी एनर्जी कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज एक GE वर्नोवा कंबस्टन टर्बाइन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग नेचुरल गैस। एंड एक इनका जो कंबाइंड साइकिल कॉन्फिगरेशन होता है उसके हिसाब से हीट दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड इज एक्चुअली कैप्चर्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, जिसके चलते वो दूसरे टर्बाइन को पावर करेगा, अलाउिंग द फेसिलिटी टू जनरेट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशियंटली। तो जो भी पहले इसका वेस्ट निकल रहा है वो वेस्ट ना होके उसको रीपर्पज किया जाएगा इन टू कन्वर्टिंग इट इन टू मोर एनर्जी, बेसिकली इज वॉट द लॉजिक इज। सो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स जो पर्सन काउंटी एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, इट इज पार्ट ऑफ ड्यूक एनर्जीज एफर्ट टू मॉडर्नाइज उनके जनरेशन फ्लीट, बिकॉज जो उनके ओल्डर प्लांट्स हैं देर अप्रोचिंग द एंड ऑफ ऑपरेशन, सो दे आर कमिंग अप उनके नए प्लांट के साथ, एंड वहाँ पे वो नए टेक्नोलॉजी वाले मशीनरीज भी ला रहे हैं। सो या lot of numbers and lot of नई नई चीज़ें हमें वहाँ पे देखने मिलने वाली है, इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस न्यू प्लांट का उनका ऑब्जेक्टिव। सो या अब वो होगा आराम से उसका इंस्टॉलेशन एंड सब कुछ, एंड देखना है कि उसका फ़ायदा हमें कैसे होता है एज कंज्यूमर्स। या स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आयुषी आपके साथ।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. यार एक खुद का उनको उनका डीएनए लैब मिलने वाला है. वेक काउंटी इज लॉन्चिंग उनका खुद का डीएनए लैब, सेइंग दैट दिस बड़ी सी $1 million इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑलमोस्ट $1.6 million की इन्वेस्टमेंट, इज गोइंग टू बी हेल्पिंग द लॉ एनफोर्समेंट गेट उनके टेस्ट रिजल्ट्स मच मोर क्विकली. सो इसकी अनाउंसमेंट वैसे देखा जाए तो 2022 में हुई थी, जब स्टेट लीडर्स साइटेड अ लॉन्ग बैकलॉग एट द स्टेट लेवल, जिसके चलते इन्वेस्टिगेशंस जो है वो बस डिले होते जा रहे थे. देयर वाज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग इन्वेस्टिगेटर्स एंड द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स एज वेल. सो देयर लाइक कि बहुत बैकलॉग होने के चलते हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इन्वेस्टिगेशन ठप हो गया एंड हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सो दे हैड टू वेट इन लाइन एंड दे हैड टू जस्ट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ रिस्पॉन्स बैक. सो अब फाइनली ये जो नई लैब है, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस वेट टाइम्स, लिटरली डाउन फ्रॉम वीक्स और मंथ्स टू जस्ट मे बी लाइक अ फ्यू डेज. सो अब ज्यादा देर के लिए बेसिकली रुकना नहीं पड़ेगा. ऑल्सो द एनालिस्ट्स विल हैव एक्सेस टू कोडिस, विच इज द FBI's कंबाइंड DNA इंडेक्स सिस्टम, जिसके चलते दे कैन हेल्प कनेक्ट द डॉट्स इन कोल्ड केसेस या फिर हाई प्रोफाइल केसेस दैट स्पैन मल्टीपल स्टेट्स. सो बेसिकली दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी helping them solve crimes much faster, and we are obviously hoping for that, ki yes iski actually waisi hi help hame mil jaye. So let's hope for that. Stay tuned, main hoon Shiv ke saath.

Namaste ji, welcome back. Aapne tune in kiya hai Naira Rally Drum Pakadesi Pakalukal Mahayushi and aap sun rahe hain Zara Muskurao. Family health insurance ke jo premiums hai, they have now increased more than 50% from 2013 to 2024. And hamara state ranks in the bottom half of states in overall health system performance, uska access and affordability as well. And that is the message that state leaders and members of the North Carolina Healthcare Affordability Commission heard during unki initial meeting, jo abhi Tuesday ko hui. So this panel, which was basically created by hamare governor through an executive order, includes lawmakers. Usme aur bhi log aate hai, jaise ki state officials and representatives from hospitals, physician groups, insurers, employers and patient advocacy administrations. And uske baad phir North Carolina ke jo Republican state treasurer hai, wo bhi uske co-chair hai. The state's Democratic Secretary of Health and Human Services bhi usme aate hai. And ye sare log baith ke ab baat karne wale hai, discuss karne wale hai, to make sure ki hamare state ke jo healthcare costs hai, kya wo hum और नीचे कर सकते हैं या नहीं. सो अब ये जो बायपार्टिजन कमीशन बनाया गया है, इट हैज नाउ गॉटन टू वर्क. दे हैव लाइक सेट फॉर उनका इनिशियल मीटिंग एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी हैविंग मल्टीपल मीटिंग्स एंड डिस्कसिंग विथ वन मिशन, फाइंडिंग वेज टू मेक मेडिकल केयर मोर अफोर्डेबल फॉर ऑल द पीपल ऑफ आर स्टेट. एंड हम ऑब्वियसली होप करेंगे कि ये लोग जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए. कुछ बहुत ही इनिशियल चीज़ें अभी ट्यूसडे की मीटिंग में डिस्कस हुई है एंड अब देखना है कि आगे क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लाई जाती है, क्या क्या सोल्यूशंस निकाले जाते हैं. एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस, उसके रिजल्ट्स एंड सोल्यूशंस. या स्टेडियम

इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है वैसे. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम, पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. Health officials are still investigating the large outbreak of diarrhea caused by this parasite Cyclospora, and they are saying that they have very strong evidence ki ye jo pura outbreak shuru hua hai, it started from shredded iceberg lettuce supplied by Taylor Farms, and that is likely the source. बट उनका जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, उन्होंने बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसका टेस्टिंग किया, एनालिसिस किया, एंड देयर वाज अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर द पैरासाइट ओवर द वीकेंड. सो बेसिकली दे आर सेइंग दैट एफडीए का जो ट्रेसबैक इन्वेस्टिगेशन एंड आउटब्रेक डेटा रहा है, इट इज़ कंटिन्यूइंग टू कन्वर्ज ऑन दिस पर्टिकुलर श्रेडेड आइसबर्ग लेटर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फार्म, उनका लोकेशन इन सेंट्रल मेक्सिको. एंड दे आर लाइक इवन इफ देयर इज अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो रोकने नहीं वाले हैं. So they are like, you know, protecting the American public remains a highest priority. So उन्होंने लोगों को भी कहा है कि आप वहाँ से जो भी अगर आपने खरीदा है लेटस तो फेंक दीजिए. And they are encouraging public to continue to avoid all the products listed in Taylor Farms का voluntary recall. And अब देखते हैं कि आगे उनको बेसिकली क्या पता चलता है क्या नहीं. FDA ने उनका एक क्लैरिफिकेशन मंडे को दिया टू क्लैरिफाई दैट दिस फॉल्स पॉजिटिव लैब सैम्पल डज नॉट चेंज द बेसिस फॉर उनका ऑनगोइंग आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन. देयर लाइक हम फिर भी और इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं. एंड अब मतलब देखते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक तो पहुँचा है, अब देखना है कि आगे क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली ये आउटब्रेक कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से नहीं. बट मीनवाइल ऑल वी कैन डू इज जस्ट मेक श्योर कि हम वो प्रोडक्ट ना कंज्यूम करें. अगर हमने खरीदा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, एंड वो प्रोड्यूस जो है, वो प्रोडक्ट्स जो है, वो ऑल टुगेदर बाय करना अवॉइड ही करें. ऑल वी कैन डू इज दैट एज ऑफ नाउ. सो या स्टे ट्यून्ड.

0: I don't know what kind of feelings I have for this. Ek jagah thoda se acche bhi, ek jagah nahi bhi hai. Aapne tune kiya hai Naira Rally Drum, Paka Desi Paka Local. Main hoon Ayushi and aap sun rahe hain Zara Muskurao. I mean, ek jagah hum protests dekh rahe hain, logon ka aakrosh dekh rahe hain, and hum unka ek overall frustration dekh rahe hain with the system and with the government. And dusri jagah hame उसी सिस्टम से, उसी मिनिस्ट्री के एक हिस्से पता चला है कि यू नो देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर इम्प्रूवमेंट इन इंडियन स्पोर्ट्स. कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने कहा दैट इंडिया इज कमिटेड टू लीविंग अ लास्टिंग इंस्टीट्यूशनल लेगेसी व्हेन इट इज गोइंग टू बी होस्टिंग उनका सेंटेनरी एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030 एट अहमदाबाद, यानी कि अभी 4 साल बाद. सो बेसिकली ग्लासगो में एक मीटिंग हुई एंड एड्रेसिंग द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग देयर, इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, ही अर्ज फॉर अ स्ट्रॉन्गर नंबर ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स. ही ऑल्सो आउटलाइन द गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड ही ऑल्सो सेड कि देर इज गोना बी वेरी लाइक अ स्ट्रेंथेंड एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क एंड देर आर गोना बी फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स जैसे कि खेलो इंडिया टू नर्चर ग्रास रूट्स टैलेंट. कि यस, कॉमनवेल्थ हमारे यहाँ अगर हो रहा है तो इंडिया के प्लेयर्स तो होने चाहिए, है ना, ऑब्वियसली. सो या देर लाइक कि इंडिया वुड बी प्लीज टू होस्ट मीटिंग्स, टेक्निकल वर्कशॉप्स एंड रीजनल कंसल्टेशंस इन द लीड अप टू 2030. सो उसके पहले देर लाइक कि जो भी तैयारी की जरूरत होगी हम सब करने के लिए तैयार है, आप बस हमें बताइए. एंड ही ऑल्सो अर्ज बेसिकली कॉमनवेल्थ नेशंस टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स रिलेटेड टू दिस. सो Yeah, let's see how it goes. Stay tuned, main hoon Ayush Shakti.
1: Sunte rahiye Radio Nahara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: Welcome back. Aapne tune in kiya hai Naira Rally Drum, Pakka Desi, Pakka Local, Mahuayushi, and aap sun rahe hain Zara Muskurao. The conflict is just widening. Kam hone ka bilkul bhi naam nahi le rahi hai. Yemen ke jo Iran backed Houthis hai, unhone claim kiya hai to have struck two Saudi oil tankers in the Red Sea aaj subah unke local time pe, following their Monday announcement of a naval blockade on Saudi ships. उसके चलते जो एक ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ गया है, इट हैज़ नाउ नियरली रोज टू $90 अ बैरल ऑन द न्यूज़. ऑनगोइंग थ्रेट्स की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप सेड दैट द यूएस विल बॉम्ब
1: ड्यूरम 1490 AM
0: और पावर प्लांट एवरी टाइम ईरान टारगेट्स अ शिप इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं. He basically later described Trump's Iran policy as a head for an eye. Fresh attacks hue hain aaj subah. Iran fired 4 missiles toward Jordan, 3 of which were intercepted. Aisa country ke armed force ne kaha hai. US strikes on Iran killed 2 people at a border crossing with Iraq. Iranian state media ne aisa report kiya hai. So these are all the latest updates from the conflict that is going on, and jo hame roz mil rahe hain, रिजोल्यूशन सोल्यूशन बंद होने का कहीं कहीं नामो निशान नहीं है एज ऑफ नाउ. एंड या दिस इज वेयर वी आर. स्टे ट्यून्ड. मैं हूं आयुषी के साथ.

0: आई वॉज लाइक कि अच्छा यहाँ पे भी मतलब ऐसे हो सकता है, पता नहीं था. आपने ट्यून इन किया है नाइजर अली ड्रम पका देसी पका लोकल, मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. अब द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ इज जस्ट कंटिन्यूइंग टू ग्रो. अभी पिछले हफ्ते ही इंडिया ने उनका पहला प्राइवेट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया. एंड अब अगर इतने सैटेलाइट्स है obviously, तो there is a risk of crashes between these spacecrafts. And such collisions could create fields of debris, potentially rendering entire areas of these orbit useless. Because वो debris कहाँ कैसे जाएगा, कहाँ पे फिर से collide करेगा, हमें नहीं पता. इसके पहले भी objects in space have crashed. We have had near misses. And ऐसे incidents are वैसे देखा जाए तो extremely rare. But now there are more than 18,000 active and inactive satellites in orbit. ऐसे में there is a plan now to address, and it is basically reigniting a turf war. मतलब ये सोचा नहीं था किसी ने कि space के इस particular हिस्से के लिए भी अब kind of झगड़े हो सकते हैं. So the US Federal Communications Commission has adopted a new set of rules which is largely supported by the industry that would modernize the approval process for satellites and create new safety space provisions. Specifically, ye jo rules hai, they would require satellite operators to share real-time tracking data ताकि जो स्पेस ट्रैफिक मैनेजर्स हैं दे कैन गेन अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर ऑब्जेक्ट्स आर इन ऑर्बिट एंड फिर वो अकॉर्डिंगली उनको बेसिकली मैनेज कर सकते हैं. एंड अब ये जो रूल्स है वो वाइडली नॉट ऑब्जेक्शनेबल है बट दे आर काइंड ऑफ रीइग्नाइटिंग अ टर्फ वॉर ओवर हु गेट्स टू कॉल द शॉट्स ऑन स्पेस. बेसिकली ऐसा हो रहा है कि US फेडरल कम्युनिकेशंस ही क्यों डिसाइड कर रहा है, बाकी के लोग क्यों नहीं डिसाइड कर सकते, बाकी के रूल्स लोग क्यों नहीं रूल्स के साथ कम अप करके आ सकते कि अरे नहीं दीज आर द रूल्स विच वी आर गोना बी फॉलोइंग. बट द FCC हैज बीन द डिफैक्टो सैटेलाइट रेगुलेटर फॉर डेकेड्स बिकॉज ऑफ इट्स अथॉरिटी टू मैनेज स्पेक्ट्रम या फिर द रेडियो वेव्स दैट अलाउ डेटा टू बी बीम्ड वायरलेसली फ्रॉम स्पेस और एयरक्राफ्ट. बट अब ये कमर्शियल स्पेस बूम हो रही है तो अब वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बरोबर ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले. बेसिकली पता नहीं हाउ दिस इज गोना गो बट या बेसिकली द थिंग इज कि ये सारी चीज़ें फॉलो तो करनी पड़ेगी नहीं तो कोलिजन होते रहेगा एंड कोलिजन्स बढ़ते जाएंगे ऐसा बेसिकली कहना है लोगों का. तो दिखते हैं. आई मीन आई वाज लाइक कि यहाँ पे भी झगड़े हो सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था बट हो रहे हैं अपेरेंटली.
1: यू आर लिसनिंग टू WCMC FM होली स्प्रिंग्स 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham.

सादिसी हो आशिकी हो मुझे पता है तुम किस गली हो किस मोहल्ले जात की हो मुझे पता है तुम खुश नहीं हो दिखती तो आजाद भी हो पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे बाद भी हो

If you already don't know about it, let's talk about it. आपने ट्यून इन किया है नेचुरली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूँ आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. ऑन मंडे दैट इज जुलाई 28th दिल्ली में एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ. एंड अभी तक अगर देखे तो मंडेज मार्च ऑन पार्लियामेंट द प्रोटेस्ट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट इन ईयर्स. It was organized by a youth-led movement that basically began as a joke, and that is the Cockroach Janata Party. But tab se leke abhi tak it has grown into a bahut hi driving force articulating the frustrations of millions of young Indians. बहुत सारे अलग अलग मुद्दे ऑब्वियसली आ रहे हैं कि अरे ये तो बात नीट की थी, यहाँ पे बाकी की बातें क्यों चल रही है. और मैं बता दूँ कि दिस इज जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑफ ऑल दीज इयर्स. एंड ऐसा है कि एक प्रॉब्लम अगर जब उठ के आता है तो बाकी के प्रॉब्लम्स में ऑटोमेटिकली दिख के आते हैं. एंड देन वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो है बट ये भी प्रॉब्लम है, आप इसका क्या जवाब दोगे. ऐसे करते करते अभी तक ये पिछला हफ्ता भी बहुत भारी रहा है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए. ये हफ्ता हमने देख लिया क्या हुआ है. इफ़ यू स्टिल डोंट नो, बेसिकली जो मंडे को मार्च हुआ वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली अटैक किया है एंड बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे लगा है. दिल्ली पुलिस हैड ऑल्सो इम्पोज्ड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अहेड ऑफ द मार्च एंड देन डिक्लेयर्ड इट अनलॉफुल एंड देन आके उन्होंने बहुत बेसिकली अलग अलग वहाँ पे चीज़ें की है. ऐसे में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है Modi ji, he has not publicly responded to these demands jo protesters ne rakhi hai. And he sent a message via the Minister of Parliamentary Affairs ki nahi, we are now looking into the paper leaks jiske chalte ye bada sa protest hua hai. And ab aaj subah unhone dala hai ki yeah, we are fast tracking the whole process jisme hum paper leaks ke bare mein baat karenge. But yeah, there seems to be growing determination among the protesters who say that they will continue to sit in until their demands are met. And they're like, we want a change of education minister and an overhaul of the exam system. And uske saath saath aur bhi

चीज़ें हैं, बट वील एड्रेस देम स्लोली एंड आराम से. बट बेसिकली उनका से कहना है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जवाब तो दो, जवाब तो दो, आप इग्नोर कर रहे हो पिछले दो हफ्तों से. सो दिस इज़ वॉट हैज़ बिन हैपनिंग. एंड इफ़ यू स्टिल डोंट नो, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम लेके प्रॉपरली इसके बारे में पढ़िए, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आई मीन हम भारत के लोग हैं तो यार इसके बारे में पता होना चाहिए. स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आयुषी आपके साथ.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यूनन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूं आयुषी एंड मेरे साथ आप फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आज खाने के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ओकेजन्स इन द सेंस कि दे आर वेरी वेरी नाइस, वेरी पेपी. आज नेशनल वनीला आइसक्रीम डे है, उसके साथ साथ वी आर सेलिब्रेटिंग स्प्रिंकल डे एंड उसके साथ साथ देयर इज पीनट बटर एंड चॉकलेट डे एज वेल. आई वॉज लाइक येस, ऑल ऑफ दीज स्वीट ओकेजन्स आर गिविंग मी थोड़ा सा एक दिल को सुकून कि चलो एटलीस्ट ये थोड़ी चीज़ें हम इंडल्ज करके अच्छा फील कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए. या आज नेशनल गॉर्जियस ग्रैंडमा डे भी है. इट इज़ जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिंग आवर ग्रैंड मदर्स. आज नेशनल रिफ्रेशमेंट डे है. हमें वैसे आज सच ज़रूरत नहीं है बिकॉज समर के हिसाब से हमारे यहाँ पे 70s में टेम्परेचर है एंड आज बारिश भी होने वाली है बहुत अच्छी खासी. बट या एंड बाकी आज आज सच कुछ नहीं है कि ठीक है, मतलब यही है बेसिकली ओकेजन्स जो आज चल रहे हैं. तो आप अकॉर्डिंगली उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट हैव फन विद देम, स्पेशली विद नेशनल वनीला आइसक्रीम डे एंड स्प्रिंकल डे एंड पीनट बटर एंड चॉकलेट डे. सो या यू कैन जस्ट हैव फन विद देम इन जनरल. सो डू हैव फन विद देम. बाकी हम इस वीकेंड क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम.

0: Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

जी वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूं आयुषी. आप सुन रहे हैं सलाम मुस्कुराओ. आई मीन बारिश चल रही है बट फिर भी दिस वीकेंड यू कैन एक्चुअली गो टू डिक्स पार्क एंड एन्जॉय द सनफ्लावर्स वाइल देयर स्टिल इन ब्लूम. ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेंगे वो बिकॉज वो ऑलरेडी पिछले हफ्ते ब्लूम हो चुके हैं. तो यही हफ्ता है शायद से आपके पास कि आप जाके एन्जॉय करके आ पाएं. अदर देन दैट दिस वीकेंड आज से लेके 26 तारीख तक वी हैव गैलेक्सी कॉन एट द राली कन्वेंशन सेंटर. एक बड़ा सा 4 दिन का फेस्टिवल है ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट राइटर्स वॉइस एक्टर्स कॉस्प्लेयर्स एंटरटेनर्स क्रिएटर्स रेसलर्स फैन ग्रुप्स पैनलिस्ट सब लोग वहां पे जमाए होंगे. जरूर एंजॉय कीजिए. देन वी हैव एनसी करेज वर्सेज यूटा रॉयल्स गेम एट वेक मेट सॉकर पार्क. देन वी हैव Bikes, Burgers and Brews happening on July 25th, yani ki parso. Tobacco Road Harley-Davidson is hosting this action-packed day. Then we have Yoga Flow in Fenton Square on July 25th. On July 26th, we have Taste of Soul in Raleigh City Plaza. Then we have Underground Market, Drum Underground Market at Drum Central Park, jo 26th ko hoga. Then we have Cardinal Carnival at Cardinal Charter Academy. Wahan pe bachon ke liye sab kuch hai. We have Splash Pad Bash on July 25th. We have Bubble Festival on July 26th at Moore Square. We have Summer Shindig in Fakway Varina on July 26th. And then we have some concerts happening. So yeah, do enjoy them as well. But jaise maine kaha ki hame thoda sa traffic ke taraf bhi dhyan dena hai. So yeah, that's that. Stay tuned.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 414-90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल। मैं आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। फीफा वर्ल्ड कप फैंस ने तो सेलिब्रेट किया ही, बट लाइक कन्वेंशनल वे के साथ साथ बहुत ही अनकन्वेंशनल वेज में भी सेलिब्रेट किया। हमने देखा कि एक बड़ा सा सॉकर बॉल इंस्टॉलेशन हुआ, फिर उसके बाद और भी दो तीन चीज़ें हुई इन द सेलिब्रेशन इन द स्पिरिट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। अब वो वैसे देखा जाए तो ख़त्म हो गया है, बट उसके बाद भी एक ख़त्म होने के बाद का जो सेलिब्रेशन था कि वर्ल्ड कप एकदम सक्सेसफुली हुआ, हमारी टीम जीत गई, उसमें एक न्यूयॉर्क की कंपनी, अल्कोहल कंपनी, बेसिकली सेलिब्रेटेड द विक्ट्री आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप बाय गैदरिंग डजन्स ऑफ पीपल टू प्ले ऑन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फूजबॉल टेबल। सो उन्होंने बेसिकली एक फूजबॉल टेबल असेंबल किया था मेजरिंग 525 फीट लॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली द लेंथ ऑफ 112 स्टैंडर्ड साइज फूजबॉल टेबल्स, एंड देन इट वॉज गिवन अ टेस्ट रन ऑन July 11th। उसके बाद एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर जो है, ही वॉज ऑन हैंड टू कन्फर्म दैट येस, इट हैज ऑफिशियली टेकन द टाइटल फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फूजबॉल टेबल। सो डिस्पाइट द वार्म टेम्परेचर्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे एंड दे वर लाइक कि द इवेंट वेंट स्मूथली। बहुत सारे लोगों ने आके इसको एकदम इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया, फूजबॉल खेला एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करा दिया। सो इट वॉज वेरी इंप्रेसिव इन पर्सन एज वेल, लाइक इट स्पैन मोर देन अ सिटी ब्लॉक, तो पीपल वर सुपर एक्साइटेड टू प्ले ऑन इतना बड़ा फूटबॉल टेबल इन जनरल। सो या Now it is the official world's longest football table, जो भी ब्रुकलिन में हुआ। स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आयुषी आपके साथ।

back aapne tune in kiya hai Naira Rally Drum Pakadesi Pakalukal main hua Yushian meri sara filhal sun rahe hain zara muskurao and now it is time for me to sign off yes अच्छे नोट पे अच्छे एनर्जी के साथ वी आर गोना बी साइनिंग ऑफ वी आर गोना बी सेइंग गुडबाय टू ईच अदर सिर्फ आज के लिए कल मिलेंगे फिर से विद न्यू एनर्जी न्यू ऑब्वियसली होप्स एंड एवरीथिंग एंड या इट इज जस्ट बेसिकली द पॉइंट इज कि हमें ना आवाज उठाते रहना चाहिए हम बैठ के बहुत ऐसे सुस्त आ गए हैं ओवरऑल इन जनरल कि अरे दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है वो तो सभी बुरी हैं हम कितनी बुरी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे एंड हम काइंड ऑफ एक अकस्टम हो गए हैं कि हाँ मतलब चल रहा है बुरा ही तो हो रहा है क्या ही मतलब ठीक है हम अपना देखेंगे लोग अपना देखें जब तक हम मिलके नहीं आवाज़ उठाएंगे कुछ नहीं होगा एंड मिलके अगर आवाज़ उठाते हैं तो यस सामने वाला सुनता है ये तो अब हमें पता चल गया है सो इट इज़ जस्ट अबाउट इन जनरल कि हमें आवाज़ उठाते रहना है इनजस्टिस के अगेंस्ट एंड जस्ट शांत नहीं बैठना इतना कंफर्टेबल नहीं हो जाना है उस साइलेंस के साथ दैट इज द मॉरल दैट आई एम काइंड ऑफ लीविंग यू विथ इन जनरल वो खुद के लिए भी है मैं खुद के लिए भी ये लागू कर रही हूँ कि हम हो जाता है कंफर्टेबल कह रहे हैं हो रहा है ना क्या हो रहा है हम क्या ही करेंगे जाने दो वो उधर हो रहा है हमारा क्या उससे लेना देना ऐसी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है बट या Anyway, अच्छे नोट पे मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ विद लॉट ऑफ आपके फेवरेट बॉलीवुड के गाने बहुत सारी बढ़िया बातें विथ मोनिका भारती इसलिए आप कहीं में चाहिए सुनते रहिए नायरा राली ड्रम ऑन 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ एंड हैव अ सुंदर दिवस अहेड एंड सी यू टुमारो बाय

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी पका लोकल.

0: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundy. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundy, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
2: Dosa Bundy, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: The Multidark Arika Bad one more time. Welcome Haji on 101.9 FM, 99.9 FM LG4 for 90 AM and 99.9 FM LG3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dudes and Dogs. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415.40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉर्थ विक्सबोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉर्थ विक्सबोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka deshi, pakka local.
1: Qatl karti hain nigahein ki dil ko khabar na ho. Zakhm deti hai aisa ki dard ka asar na ho. हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल. लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sundariya Monica ke saath Radio 9 aur Pakka Desi, Pakka Local.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिल फिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द NCDU बिल फिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरा एंजॉय करिए, फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

Massacre. ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu Daira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूंस एंड टॉक. पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है. वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट ऑफ पक्का देसी पक्का लोकल.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देखिए, पक्का लो कर लो।

0: आप लिसनर ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SG4 for 90 AM and 99.9 FM, SG3 for Telugu, Naira, same hour, aap ki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Rules and Thoughts.
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट. Known as Mr. Saturday Night, Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart popping and topping with his high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इस और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन. पक्का देसी, पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 1490 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर नाइनटी एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु. नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक्स. वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है. एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन. With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SG4 49 AM एंड 99.9 FM SG3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिस विले, रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि रच्चा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून। रच्चा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the NCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमस करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Dunes and Talk। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: नॉर्थ कैरोलिना, द वेट इज फाइनली ओवर।
2: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस, इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली। Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
3: Witness the phenomenon, the passion,

0: Ali Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919.
2: What kind of Christmas is this? It's Christmas in July, peanut style, with the North Carolina Courage on Saturday, July 25th. Bring the whole family to First Horizon Stadium as the Courage take on the Utah Royals at 7:45 p.m. for a summer match day with a holiday twist. Enjoy letter writing to Santa, Peanuts-themed fun around the stadium, and a Courage Time Peanuts bucket hat giveaway for the first 500 fans through the gates. Don't miss Christmas in July with the Courage. Get your tickets at tickets.nccourage.com.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, एसडी 44 1090 एएम. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशा।

तारकोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira Meko Jao Pakka Desi.
2: हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? दिस इज हेलो वैष्णवी शो और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती है अनलिमिटेड। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिन कहाँ थी ये वैष्णवी। वेल, मैं गई थी इंडिया, तो 1 month ट्रिप था मेरा एंड इट वाज सो अमेजिंग। बहुत सारी बातें बताऊंगी मैं इंडिया में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया। वेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कमिंग बैक एंड टॉकिंग टू यू ऑल। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो दिस इज़ लाइव शो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8919998595 पर। वेल, आज का कुछ टॉपिक मैंने सोचा नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या क्या हुआ इस एक महीने में राली में या फिर आपके लाइफ में। डेफिनेटली आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। वेल, और हम बात करते रहेंगे, चलिए सुनते हैं एक गाना और शुरू करते हैं अपना शो हेलो वैष्णवी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर, एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती है अनलिमिटेड। वेल दोस्तों, तो एक महीना वेर वाज आई, कहाँ थी मैं? वेल, मैं गई थी इंडिया, और वहाँ से मैं खूब सारी खबरें लेके आई हूँ, उसी तरीके से जैसे आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, कुछ तो मुझे पता है। वेल, अभी अभी हमने विशाल शेखर का शो जो हुआ था, कॉन्सर्ट, वाओ अमेजिंग शो था, वो हुआ था यहाँ पे, तो मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। वेल, मैंने तो मिस कर दिया वो शो, पर कोई नहीं, आप सब ने एंजॉय किया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और नेक्स्ट आने वाला है प्रभु देवा का शो, तो डेफिनेटली आप सब रेडी है, हम जानते हैं, और ज़रूर हमारे साथ होंगे गेस्ट एट 5:30, जो कि हमें बताएंगे प्रभु देवा कॉन्सर्ट के बारे में। तो वेट करते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि राली रूम में क्या क्या हो रहा है, आखिर ट्रायंगल में क्या क्या हो रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 919-999-8595 पर। तो तब तक चलिए सुनते हैं अगला गाना।

0: What kind of Christmas is this? It's Christmas in July, peanut style, with the North Carolina Courage on Saturday, July 25th. Bring the whole family to First Horizon Stadium as the Courage take on the Utah Royals at 7:45 p.m. for a summer match day with a holiday twist. Enjoy letter writing to Santa, peanuts-themed fun around the stadium, and a Courage Time Peanuts bucket hat giveaway for the first 500 fans through the gates. Don't miss Christmas in July with the Courage. Get your tickets at tickets.nccourage.com.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर, एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी एंड आई एम योर होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती है अनलिमिटेड। और हम आज बात कर रहे हैं इंडिया से वापस आने की। वेल, आज का शो मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्हेन आई एम बैक टू, एंड मैंने माइक उठा लिया है। और जब कोई इंडिया जाकर वापस आता है ना, तो सूटकेस में सिर्फ कपड़े और गिफ्ट्स नहीं होते, यू नो क्या होते हैं, साथ में होती है बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, थोड़ी शॉपिंग की स्टोरीज, थोड़ी फैमिली ड्रामा और अनलिमिटेड गॉसिप्स। वेल, गॉसिप्स तो मैं करूँगी नहीं, तो ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऑफकोर्स, मतलब इस बार का ट्रिप मेरे लिए इसलिए स्पेशल था क्योंकि यू समझो कि 10 डेज मैंने रोड ट्रिप और ऑफकोर्स लोकल फ्लाइट ट्रिप क्या नहीं किया, और सारे मैंने इतनी अच्छी अच्छी जगह पे गई हूँ ना। लेट मी स्टार्ट विथ, मैं गई थी उत्तर कर्नाटका। अगर आप सबको नहीं पता है उत्तर कर्नाटका के बारे में, तो मैं बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे कि यहाँ एनसी में जितना ग्रीन आप देखते हो ना, सेम आपको वहाँ पे भी वही मिलेगा, बहुत सारे पहाड़ और उसके बीचों में से रास्ते, और समझो कि पूरा ऐसा लगेगा कि बस पेड़ों ने आपका स्वागत कर दिया है। जब आप एंटर करते हो ना, तो रोड पूरे ऐसे भरे होते हैं पेड़ों से। तो वो था उत्तर कर्नाटका। ऑफ कोर्स गर्मी तो मतलब अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि इट वाज टू हॉट। डेफिनेटली टैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैं हो चुकी हूँ। वेल, लेकिन बहुत मज़ा आया था। आई विजिटेड लॉट ऑफ टेम्पल्स, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और क्या बताऊँ, गर्मी के बारे में तो है ही। और मैंने, हाँ, मैं ऐसे टाइम पे गई जहाँ पे सिर्फ आम का सीज़न ख़त्म ही होने वाला था और बारिश शुरू होने वाली थी, तो मैंने लास्ट, क्या बोलते हो उसे, पेड़ के लास्ट फलों का स्वाद शायद मैंने ही किया। मैं बहुत लकी थी कि मुझे आम खाने का अवसर वहाँ पे फिर से मिला, जो कि एकदम लास्ट था, वो सीज़न का लास्ट आम। क्या बताऊँ, वाओ, आम इज़ लाइक एवरीवनस फेवरेट, है ना। वेल, बातें होती रहेंगी, और अगर आपके पास भी कुछ है शेयर करने के लिए, तो ज़रूर ज़रूर कॉल करिए एट 919-999-8595 पर। ये नहीं कि आप कुछ स्टोरी शेयर करें या कुछ भी करें, बट आप कुछ भी कह सकते हैं कि अगर आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था या बहुत ज़्यादा बुरा भी था, स्टिल यू कैन शेयर, बिकॉज रेडियो नायरा इज़ फॉर एवरीवन, है ना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर, एंड दिस इज हेलो वैष्णवी लाइव शो और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। हमने काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड बातें आज की और हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी प्रभु देवा के कॉन्सर्ट के बारे में, तो ज़रूर ज़रूर जाइएगा, यू नो अभी से मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर को अगस्त 9th के लिए। वेल, मैं बता रही थी आपको कि इंडिया की खबरें, और मेरे पास अभी भी बहुत सारी बची हुई है, लेकिन अब हमारे साथ गेस्ट थे तो बात तो करना ही था। वेल, आपको और भी शेयर करूंगी मैं अगले हफ्ते। फिर मिलेंगे हम थर्सडे के दिन बिटवीन 5 to 7 PM किसके साथ? वैष्णवी के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखिए। और कल आने वाली है ज्योति, जिनका शो है आज की शाम ज्योति के नाम, बिटवीन 5 to 7 PM, मत भूलिएगा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक के साथ वो आने वाली है कल। और उसके बाद सैटरडे होगा वैन का शो दिल से देसी, वो है 12 to 2 PM तक, डोंट मिस द शो। एंड फिर और क्या, फिर हफ्ता शुरू संडे के दिन होगा आपके साथ शो गीत बाजार, सो डोंट मिस बिटवीन 10 to 12। एंड देन यू हैव ऑन ट्यूसडे विद प्राची, सुन जरा। और उसके बाद हमारे अर्पित और कौन इधर उधर की बातें लेके, वो हो जाएंगे वेडनेसडे के दिन बिटवीन 5 to 7। और फिर आता है अपना शो हेलो वैष्णवी का शो, सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम बिटवीन 5 to 7। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए जो मैं हमेशा कहती हूँ, मुस्कुराते रहिए। गुड इवनिंग गाइज़।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना। Here we go.

0: टू ऑल ऑफ यू, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडेरू ऑन नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। तो आप सब लोग तैयार है आज के इस शो का हिस्सा बनने के लिए, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लोकल न्यूज़ के बारे में एंड बॉलीवुड का तड़का भी लगाऊंगा, एंड 7 से 10 आपको एंटरटेन करने का जो जिम्मा है वो मैंने ले रखा है एंड मैं लेते रहूंगा हमेशा। कैसे चल रही है आज आपकी गुरुवार की शाम? एंड बस यार, गुरुवार तो ख़त्म होने पर ही आया है एंड फ्राइडे से वीकेंड का जो मज़ा है वो सब आरटीपी ट्रायंगल एरिया एंड हमारे रैडी डरम के सारे हमारे प्यारे लिसनर्स लेने वाले हैं। तो एंजॉय करते हैं इस प्यार भरी शाम का यह पहला गाना एंड जो भी लोकल न्यूज़ है उनके बारे में हम नेक्स्ट लिंक से बातें करना स्टार्ट करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल। तो आज पहली खबर यू है कि बारिश, और बारिश के वजह से क्या है ट्रैफिक अलर्ट। जी हाँ, आज नॉर्थ कैरोलिना के सेंट्रल हिस्से में भयंकर तूफानी बारिश हुई है। ऑरेंज काउंटी में WRAL वेदर अलर्ट की रिपोर्ट के अनुसार फ्लडिंग की वजह से I-40 हाईवे को बंद करना पड़ा। मतलब इतनी धुआंधार बारिश, मूसलाधार बारिश इस एरिया में हुई है कि I-40 हाईवे को सीधा बंद करना पड़ा है। और उसके ऑप्शनल में क्या क्या रोड के ऑप्शन आ रहे हैं ये आपको GPS जो है वो चेक करके ही पता चलने वाला है। आपको अगर कहीं पे जाना हो, कुछ प्लानिंग आपकी बन रही है, तो थोड़ा मैप को देखकर एंड लोगों से पूछताछ करके ही आपको ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी होगी। एंड सुनते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो।

0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट, 7 से 10 ये हमारा शो चलता है। और आपके अगर डिवाइसेस चार्ज नहीं है तो प्लीज आपके डिवाइसेस जो है वो चार्ज करके रखें, कुछ ना कुछ पावर बैंक आप आधार ले सकते हैं। एंड प्लीज आपको ये चीज करनी है क्योंकि तूफान और पेड़ गिरने की वजह से वेक और डरहम काउंटी में 3000 से ज़्यादा घरों की बत्ती जो है वो गुल हो गई है। इसलिए अपने डिवाइस चार्ज रखें और सुरक्षित रहे। आपका अपनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब आप पर है क्योंकि मौसम ही इस कदर हो रहा है, तो टेक केयर करना ज़रूरी है क्योंकि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। आप कुछ भी कर लो, नेचर इज़ द नेचर एंड नेचर से बड़ी पावर भी कुछ नहीं है, ये सबको पता है ही एंड पता चल रहा है धीरे धीरे। तो नेचर की अगर आप टेक केयर करोगे तो नेचर आपकी टेक केयर करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप टेक से जुड़े हैं, आपके जो काम है वो मोबाइल या फिर लैपटॉप से चलते हैं, तो आपको आपके डिवाइसेस को चार्ज करके रखना बहुत ज़रूरी है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

मतलब सही मौके पर जो गाना प्ले करा है वो वाकई में सही मौका था एंड एंजॉय करा हमने ये गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन एंड आरटीपी 3.0 को हरी झंडी। रिसर्च ट्रायंगल पार्क को केवल ऑफिस जोन से बदलकर अब एक मिक्स यूज रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब बनाने के लिए आरटीपी 3.0 प्लान को वेक और डरम काउंटी ने पूरी तरह मंजूरी दे दी है। अब यहाँ और नए रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे, मतलब टेक हब से लेकर एंटरटेनमेंट का माध्यम बनने जा रहा है आरटीपी 3.0। एंड प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है। एंड काफी अच्छा होने वाला है सब कुछ, मतलब कोई भी दिक्कत यहाँ पे होते हुए मुझे नजर नहीं आ रही है एंड हरी झंडी मिल गई, मतलब काम तो हो ही गया है ना बॉस। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने ये गाना? गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड हब आरटीपी में नया कैजुअल स्पॉट चेन्नई आरटीपी ओपनिंग चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां का डोसा वेफर और पनीर राइस बाउल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि आरटीपी में अगर आप रहते हो एंड आप घूमते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो इंडियन जगह इतनी अच्छी आपको मिलेंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप आरटीपी में हैं या किसी अलग कंट्री में हैं। इंडिया में ही हो, जब आप एक्सप्लोर करने निकलते हो तो ये इंडियन जो फूड्स है उनकी खुशबू है, इस तरह से बिखर।
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 14